हाँ बिछाए कभी आ जलाए मयंग को दिंग लिनोंग अंते नंकान पेर मम मलान पे राजा हमे तुम चे तिगे उंगे मने ची तंके तिगे को मुझे रने अकू मे दुआए को यको नराले मिये कभी यलाए मिलांग को देखे तिसी सिंगाए आ सिंगाए नुपू का पुंगे कुता दे कुता हमारे मो दे ककी।